0: वंदे मातरम।
1: वंदे

एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 8:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के 8:59 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का शुभ विचार। कर्म की पूर्णता तभी आती है जब व्यक्ति निस्वार्थ होकर ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। श्री अरविंदो घोष। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स

0: इन कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
3: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी

0: जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
1: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमधरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33,72,00,000 रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनके सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। श्री खेवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के एम एम सी सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान की तर्ज पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: ने ना ख्याने।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: इस गाने के साथ ही आज का चितलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको पुनः जोड़ेंगे विविध भारती से उनके कार्यक्रमों से इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए श्रोताओं, आपको पुनः लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: हाय यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: तेरा मोर।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: साथ रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: वो तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन, विषय है मधुर वाणी।
1: वाणी की मिठास मनुष्य की शालीनता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो कड़वा बोलते हैं वे अपने उद्धत अहंकार का प्रदर्शन करते हैं और सामने वाले के स्वाभिमान को सीधी चोट पहुंचाते हैं। इस प्रकार के हे आचरणकर्ता को कोई लाभ नहीं मिलता, वरन अपार हानि पहुंचती है। अहंकार और कुसंस्कार का भोंडा प्रदर्शन ही कटुवचन है। ऐसे मनुष्य अपनी इस दृष्टता का कई बार सत्यवक्ता, खरी कहने वाले कहकर समर्थन करते पाए जाते हैं। वस्तुतः ये उनका दंभ मात्र है। सत्यवक्ता और खरी कहने वाले के लिए ये आवश्यक नहीं कि वो मानवोचित शिष्टाचार को ताक में रखकर असभ्य, उद्दंड और असामाजिक आचरण पर उतर आए। असभ्यता और सत्यवादिता साथ साथ रहते कदाचित ही देखी जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि हम दूसरों की हर बात से सहमत ही हों और उनकी इच्छानुकूल काम करने ही लगें। मतभेद से लेकर असहमति और इनकार तक की स्थिति हो सकती है, पर इस प्रकार का मन व्यक्त करते हुए क्षमा कीजिए, हमें बड़ा खेद है, कितने भाग्यशाली होते यदि आपकी सेवा कर पाते, जैसे मधुर शब्दों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। इसमें सामने वाले की मान रक्षा भी हो जाती है और अपनी शालीनता भी नष्ट नहीं होती। जिन्होंने अपनी थोड़ी सी सहायता की हो उन्हें धन्यवाद देने और कुछ अनुरोध करना हो तो कृपया जैसे शब्दों के साथ कहने में जीभ का कुछ घिस नहीं जाता, पर दूसरों पर जो झाप पड़ती है उसे स्पष्ट हो

0: होता रहता है कि बोलने वाले में शालीनता की मात्रा विद्यमान है। मीठा बोलने के लिए आवश्यक नहीं कि किसी की उचित अनुचित बातों की हाँ में हाँ मिलाई ही जाए अथवा उसकी विचारणा एवं क्रिया का समर्थन ही किया जाए। मीठा बोलने में एक ही दृष्टि प्रधान रूप से ध्यान में रखनी है कि सामने वाले के स्वाभिमान को अनुपयुक्त चोट ना पहुंचे। ऐसे कटुवचन न कहें जो उसे तिरस्कृत करते हों। ये वैसा ही आक्रमण है जैसा कि मारपीट करना या शरीर को चोट पहुंचाना। अपमान का आघात भी कम कष्टकर नहीं होता, उसकी प्रतिक्रिया प्रतिशोध अथवा प्रत्याक्रमण के रूप में होती है। किसी को तिरस्कृत करके उसे अपना शत्रु ही बनाया जा सकता है, उसे सुधारना या बदलना अशक्य है। चोट खाया हुआ व्यक्ति अपनी भूल समझ लेने पर भी उसी बात पर अड़ जाता है और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर गलती का पक्ष समर्थन ही करता चला जाता है। कटुभाषी प्रायः किसी को सुधार या बदल नहीं पाता, केवल अपने प्रति विद्वेष ही उपार्जित करता है। मीठे वचन का अर्थ है अपनी नम्रता, विनयशीलता, शिष्टता, सज्जनता का और शालीनता का ध्यान रखते हुए शब्दोच्चारण करना। यदि हम गाली गलौज जैसे मर्मभेदी अपमानजनक शब्द बोलते हैं या दूसरों को मूर्ख बेईमान कहते हैं तो ये उनके स्वाभिमान पर सीधी चोट हुई। संभव है सामने वाला भूल या भ्रम से ही वैसा कर बैठा हो जिससे हमने बुरा माना है। संभवतः अज्ञान, प्रमाद या दूर की बात न सोच सकने के कारण ही उससे अप्रिय आचरण बना हो। हम दूसरों की परिस्थिति या मनोभावना का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, अस्तु सीधे उस पर दुष्टता या दुर्भावना का आरोपण इस तरह नहीं करना चाहिए जिससे उसे मर्मभेदी चोट पहुंचे। मधुर शब्दों में बताई हुई भूल सामने वाले को यह अवसर देती है कि वो अपने कृत्य पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार कर सके और आवश्यकतानुसार अपने को बदल या सुधार सके। हर दृष्टि से लाभ मीठा बोलने में है, कटु भाषण में नहीं।
1: मधुर वाणी विषय पर आधारित आज का चिंतन अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है फिल्म संगीत का। आइए फिल्म संगीत का शुभारंभ करते हैं इस भक्ति रचना के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज़ लता मंगेशकर और उनके साथियों की है।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से आप सुन रहे थे भक्ति रचना, आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। आइए बढ़ते हैं अगली रचना की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद से। आवाज

0: मुकेश की, संगीत सलील चौधरी का और बोल गुलजार के।
1: नहीं।

0: आनंद फिल्म से आप सुन रहे थे नगमा, आवाज थी मुकेश की। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः आपको सुनवाते हैं अगला गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में, और हम लेकर आए हैं अगला गीत। फिल्म है सरगम, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आप सुन रहे थे नगमा। फिल्म थी सरगम। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: एक लाख दो

0: बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए अब सुनते हैं परिचय फिल्म से अगला नगमा, आवाज किशोर कुमार की, बोल गुलजार की और संगीत आर डी बर्मन का।

0: परिचय फिल्म से आप सुन रहे थे नगमा, आवाज थी किशोर कुमार की, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस सफर का अंतिम नगमा लेकर के हम हाजिर हैं। फिल्म है अभिमान। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।

0: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम महिला जगत, इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम महिला जगत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार श्रोताओं, सखियों और सखाओं, सभी को आपकी रेडियो सखी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज के आधुनिक युग में बिजली के उपकरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पंखा, कूलर, एसी, टीवी, मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर और अन्य कई उपकरण हमारी सुविधाएं बढ़ाते हैं। हमारी रसोई भी आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना अधूरी है, लेकिन जरूरत से अधिक इनका उपयोग बिजली की बर्बादी का कारण बनता है। जैसे कमरे से बाहर निकलते वक्त पंखा, लाइट चलते ही छोड़ देना, उनके स्विच को खुले ही छोड़ देना, कहीं किचन में मिक्सर ग्राइंडर के प्लग लगे हैं और स्विच भी ऑन है। यही नहीं, मोबाइल चार्जर भी अक्सर प्लग में लगे रहते हैं और स्विच भी ऑन रह जाते हैं। ऐसे में बिजली की तो बर्बादी है ही, हमें भी कोई फायदा नहीं होता। आर्थिक बोझ तो हम पर बढ़ता ही है और साथ ही किसी घटना के घटने का अंदेशा भी बना रहता है। अब हमारी लापरवाही सिर्फ हमें या हमारे परिवार को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पर्यावरण पर भी बुरा असर डालती है। अतः हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए देश और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए। हमारे छोटे छोटे प्रयास से हम ऊर्जा के संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं, तो क्यों ना आज से संकल्प लें कि जितनी जरूरत उतनी ही बिजली का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें घर भी तो बनाना है, हमें अपने घर को सजाना भी तो है, तभी तो ये घर हमें अच्छा लगेगा।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत, और आइए अब बात करते हैं महिला विशेष में। अब चर्चा करते हैं शिखा पांडे के बारे में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार खिलाड़ी शिखा पांडे, जिनका आज ही के दिन सन 1989 में जन्म हुआ था। सखियो, शिखा पांडे केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल भी हैं। बचपन से ही उन्होंने खेलों में उनकी बड़ी रुचि थी और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की। दिलचस्प बात यह है कि शिखा पांडे भारतीय वायुसेना में भी कार्य कर चुकी हैं, यानी उन्होंने देश की सेवा मैदान के बाहर भी की और मैदान के अंदर भी अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया।

यात्रा शुरू हुई जब 15 साल की उम्र में सन 2004 में गोवा के लिए खेलने को वे चयनित हुई। बाद में 17 साल की उम्र में सन 2007-08 के लिए उन्हें गोवा के महिला वरिष्ठ राज्य सावट के पक्ष में खेलने को चुना गया। वे गोवा में जन्मी ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे और अंतर्राष्ट्रीय T20 खेला और दिलीप सरदेसाई के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। शिखा पांडे पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोनों राज्य स्तर पर गोवा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए क्रिकेट खेला है। 26 नवंबर सन 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत में शिखा पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं अर्पित करें।

हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। श्रोताओं, 12 मई हमें याद दिलाती है उस महान व्यक्तित्व की जिन्हें पूरी दुनिया द लेडी विद द लैम्प यानी दीपक वाली महिला के नाम से जानती है। आज के दिन सन 1820 को फ्लोरेंस में जन्मी इस महिला ने अपने जीवन को बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उस समय क्रीमिया के युद्ध के दौरान उन्होंने घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा रात में लालटेन लेकर की थी। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशा बनाया। सन 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल यानी कि नर्सिंग स्कूल की स्थापना की, जो दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था। नाइटिंगेल ने न केवल नर्सों का प्रशिक्षण शुरू किया बल्कि अस्पतालों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और सांख्यिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें और रिपोर्ट्स लिखी जिनमें नोट्स ऑफ नर्सिंग बहुत फेमस है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। उन्हें सन 1907 में राजा एडवर्ड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली वे पहली महिला थीं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को कम करे। तो आइए आज हम सभी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति, दुनिया के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करें।

एक सच्ची नृत्यांगना केवल नृत्य नहीं करती, बल्कि अपनी कला के माध्यम से कहानी सुनाती है। अलकनंदा देवी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका कथक नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कला, साहित्य और संस्कृति की राजधानी कही जाने वाली काशी या बनारस, जिसे हम आजकल वाराणसी कहते हैं, वहीं की

थी अलकनंदा। उस समय के कथक नृत्य असाधारण मर्मज्ञ पंडित सुखदेव महाराज के यहाँ अलकनंदा का जन्म हुआ था। तारा और सितारा इनकी बहनें थीं। सुखदेव महाराज स्वयं राजाओं महाराजाओं के दरबार में नाच गाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटियां भी इस कला का प्रदर्शन करें। परिवार में नृत्य का माहौल होने के कारण अलकनंदा इस ओर आकर्षित बचपन से ही हो गई थी और मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने लखनऊ के अच्छन महाराज से गुरु दीक्षा ली। समय के साथ साथ इनके नृत्य में निखार आ गया। वे अपने समय की दादरा एवं भाव नृत्य की सिद्ध हस्त नृत्यांगना साबित हुई। जब वे अपना नृत्य प्रस्तुत करती थीं, तो दर्शक सकते में आ जाते थे। नृत्य में उनकी सलामी का तरीका, भाव भंगिमाएं और अंग विन्यास आज के कथक शैली से एकदम भिन्न थे। कहते हैं कि उनके दो नृत्य तलवार की धार और थाली की बारी पर नृत्य की तुलना में आज तक कोई कलाकार हुआ ही नहीं है। जीवन के संघर्षों परिस्थितियों का सामना करते करते 12 मई सन 1984 की शाम अलकनंदा को दिल का दौरा पड़ा और घुंघरों की छनछन के साथ पैरों की थाप सदा के लिए थम गई। अपनी कला और अपनी प्रतिभा के जरिए वे आज भी सभी के दिलों में हैं।

सखियों, आज के आधुनिक दौर में हर दिन नई टेक्नोलॉजी और नए उपकरण बाजार में आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बाहरी चकाचौंध से आकर्षित होकर कोई भी उपकरण ना खरीदें। कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे जो भी उपकरण आप खरीद रहे हैं उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया है तो उसकी जानकारी रखें। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी अगर आप खरीदते हैं तो इनके बैटरी बैकअप, कैमरा क्वालिटी,

आकर्षित होकर कोई भी उपकरण ना खरीदें। कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे जो भी उपकरण आप खरीद रहे हैं उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया है तो उसकी जानकारी रखें। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी अगर आप खरीदते हैं तो इनके बैटरी बैकअप, कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, स्टोरेज और प्रोसेसर, सुरक्षा फीचर्स जैसी बातों का भी ख्याल अवश्य रखें। इसके लिए आप ऑनलाइन रिव्यूज़ और रेटिंग देख सकते हैं, इससे आपको निर्णय लेने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। बिजली की कम खपत और लंबे समय तक चलने वाले डिवाइस अच्छे होते हैं। इन सब बातों में अपने बजट का भी ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ नया ही नहीं उपयोगी और टिकाऊ उपकरण भी चुनना सही निर्णय होता है। सखियों, महिला जगत कार्यक्रम में चलते चलते बात कर लेते हैं प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है और पेड़ पौधे प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार हमारे पास है। ये केवल घर की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि स्वच्छ हवा और सुकून भी हमें देते हैं, इसलिए गर्मियों में इनका भी हमें देखभाल रखना है, जैसे हम अपने परिवार का रखते हैं, अपने बच्चों का रखते हैं। सुबह जल्दी या शाम को आप इन्हें पानी दें, तेज धूप में पौधों को ना रखें और अधिक पानी देने से भी बचें और थोड़ा सा छांव का भी ख्याल रखें। सखियों, आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में पुनः भेंट होगी आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी ऋतु को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
1: सिर्फ विविध भारती।

0: रंग तरंग
1: श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरि ओम शरण की गाई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहां भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि

0: तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको पुनः जोड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: सुनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मैत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मैत्रा की आवाजें थीं और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में। उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: ये हम लोग उनके लिए हैं। आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

0: तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर ये निर्णय किया। 3 मई को हुई इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका है। एनटीए की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर ये साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जाँच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जाँच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गैस पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्य

0: मंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक और पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर चला। बाड़मेर में दिन का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके साथ ही बाड़मेर लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना रहा। जोधपुर, बीकानेर और फलौदी में भी झुलसाने वाली गर्मी रही। उधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। दिन का 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए,

0: ये समय खास हो
1: जी
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मती भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ। क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या।

0: ना, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा,
0: इसकी खुशबू कितनी अच्छी है।
1: वाह, मजा आ गया। कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका। हाँ,
2: हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दू। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई। हाँ, हाँ। और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।

0: हाँ, हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए, और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछ कर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए,
2: जी
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
2: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
5: इन्हें हमारा सलाम।
3: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
6: नमस्कार
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
3: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
6: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार

जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट

0: मल्लिका के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता।

0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लंस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम। FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज मंगलवार 12 मई 2026 को साय 7 बजे से 7:30 के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा कृषि आधारित कुटीर उद्योग, कृषि क्षेत्र में उद्यमी बने। विशेषज्ञ होंगी दीपा इंदौरिया, विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़। जो किसान भाई इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे टेलीफोन करके विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01472-2940-20-2950-20। एक बार फिर याद दिला दें, दिनांक 12 मई 2026 मंगलवार साय 7 बजे से 7:30 के मध्य हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए श्रोताओं, आपको पुनः लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
4: माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है।

यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं, तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की। बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सबने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ

पा रहा हूँ, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों, ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूट कर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में हमारे एक साथी ने लिखा है, गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम, यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था, बेहतरीन उपहार, और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं, मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सबने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नजारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना।

0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 MHz पर। यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद
1: ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच कर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघ

0: वर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको अब लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूं फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने

0: मुझे इतने चैन से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कित

0: शेखर।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुन।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं,
0: हाँ,
1: और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके

0: अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे
1: बिल्कुल।
0: साथ साझा कर सकती हैं।
1: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं,
0: हाँ
1: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या
0: जी
1: अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है, सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
0: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे,
1: सही
0: ऐसे
1: बात
0: शब्द
1: है,
0: होते हैं।
1: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
0: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
1: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में,
0: जी
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में।
0: जी
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
0: और
1: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
0: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं। घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही
1: जी
0: हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में,
1: जी
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है।
1: जी आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और वो लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है,
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है। भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती
0: हैं। बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी,
1: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश

0: ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं, हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं।

0: हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंचाई है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।

0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है, वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी CEO है और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
2: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक

0: ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी,

बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे

0: जो सुनने वाले हैं भाई, वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की, ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की, यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है, बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
1: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई, बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का

0: जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे उसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
1: जी
0: खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते
1: जी
0: हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते
1: हाँ
0: हैं, उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा हो
1: इसी
0: रहा है।
1: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: क्रिकेट में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है।

0: तो वहाँ उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में

0: हाँ मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर,
1: कक्षा
0: कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
1: पिटाई नहीं हुई थी।
0: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा। और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है,
1: जी
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था।
1: जी
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला।
1: समय
0: हाँ और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं
0: नहीं नहीं
1: हुआ?
0: नहीं नाटक करता रहा,
1: जी
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे,
1: जी
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे
0: जी जी जी यूथ
1: कुछ?
0: फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20, 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती
1: जी
0: थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी।
1: जी
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछले पिछड़े हुए जाति के लोग
1: वो
0: थे।
1: पलट के नहीं देखती थी।
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया।
1: जी
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
1: आ तो गई गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं

0: क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं तो सवेरे लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
0: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी छोड़ दी, और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे।
0: जी जी, जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने भी काई चेत, वो नाटक उसमें से, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह, हाँ।
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं, फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हम। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं।

0: और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवाकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और

0: तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ? तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप। ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनके एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ
0: और? नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था, एक और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था। और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया, जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया। और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं

0: भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया
1: क्योंकि
0: था।
1: आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है आप आइए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उसने उन्होंने मेरी तरफ देखा अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे वहां भी नाचने लगे कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छी फिल्म है अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो खुद उधर जाने की जरूरत नहीं अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया
1: प्रीमियर में नहीं गया
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी कागज के फूल और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक

0: पड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या

0: स्टडी किया, कहाँ किसको देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे।

0: और इस तरह हम दोनों ने मिलकर इक्की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: इक्की मायाई हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पर इस संदेश को भी हम सबने सुना और आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम भी ऐसा ही कुछ आपसे कहने वाला है। नमस्कार, चित्तौड़गढ़। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल पर मैं हूं आपका अपना रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारू। श्रोताओं, साल 2026 हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हमारा और आपका प्यारा आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हवाओं के रथ पर सवार होकर आती है ये आवाज है साहब, सीधे दिलों में उतर जाती है। रेडियो का ये जादुई सफर मार्कोनी के आविष्कार से शुरू हुआ था, लेकिन प्रसारण की असली शुरुआत 24 दिसंबर 1906 को हुई जब कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंडरसन ने अटलांटिक महासागर में तैरते हुए जहाजों तक वायलिन की धुन भेजी थी। 1918 में न्यूयॉर्क में ली द फॉरेस्ट ने अपना पहला स्टेशन खोला। तो इन्हीं पुरानी सुरीली यादों के साथ कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसे हमने चुना है फिल्म मधुमती से। इसमें आवाज मुकेश की है, सलील चौधरी का संगीत है और शैलेंद्र के बोल।

सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मुकेश की आवाज में फिल्म मधुमति का ये गीत अभी हमने सुना। सलील चौधरी का संगीत था और शैलेंद्र के बोल थे। तो गीत के सुहानी सफर के बाद आइए अब लौटते हैं भारत में रेडियो के आगमन पर। हमारे देश में रेडियो का पहला सफल प्रयास हुआ था जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के नाम से, लेकिन इसे संगठित रूप मिला 23 जुलाई 1927 को, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि आईबीसी ने बंबई, यानी कि जिसे तब बंबई के नाम से जाना जाता, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, ने बंबई और कलकत्ता में रेडियो स्टेशन स्थापित किए थे। श्रोताओं, इसीलिए हम हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाते हैं। अब 1930 में सरकार ने आईबीसी का अधिग्रहण कर लिया और इसे भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दे दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन यानी 8 जून 1936 जब इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। कभी नोब घुमाते थे, कभी एंटीना हिलाते थे, कभी हम नोब घुमाते थे तो कभी एंटीना हिलाते थे। वो भी क्या दिन थे जनाब, जब हम रेडियो पर इस दुनिया को पाते थे। खबरों से लेकर गानों तक हर रंग इसमें समाया था। एक छोटी सी डिब्बे ने पूरा ब्रह्मांड हमें सुनाया था। इसी नोस्टेल्जिया को जानते हुए, इसमें डूबते हुए, नोस्टेल्जिया यानी कि अतीत के सुनहरे दिनों में और पुराने समय की खूबसूरत यादों को याद करके होने वाली एक मीठी सी कसक, तो यानी कि इसी नोस्टेल्जिया में डूबते हुए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा नगमा। इस गीत को हमने चुना है फिल्म ब्लैकमेल से। किशोरदा की आवाज है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं। आइए सुनते हैं आपके अपने रेडियो सेट पर जिसे आपने ट्यून किया है FM 102.9 MHz पर।

पास तुम रहती हो। रेडियो भी इसी प्रकार से पल पल हमारे दिल के पास रहता है और ये दिल और इसकी आवाजें आप तक पहुंचाता रहता है। दोस्तों, रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आजादी का भी मुखर स्वर बना। 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रेडियो ट्रांसमीटर जमा करने के निर्देश दिए गए, तब नरीमन प्रिंटर ने पुर्जे छिपाकर 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो शुरू किया और रेडियो स्टेशन के माध्यम से ही गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो सिंहनाद कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो भी रेडियो के जरिए ही जर्मनी से हम तक पहुंचा था। लहू में उबाल ला दे वो पैगाम था रेडियो, लहू में उबाल ला दे वो पैगाम था रेडियो, आजादी के दीवानों का गुमनाम सिपाही था रेडियो। उन्हीं वीर सपूतों को नमन करते हुए हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने चुना है फिल्म शहीद से। महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता की आवाजें हैं और इस कार्यक्रम को यानी कि फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।

मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गीत को अभी हमने सुना महेंद्र कपूर, मुकेश, राजेंद्र मेहता की आवाजों में। फिल्म का नाम था शहीद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, जिसे आपने ट्यून किया है FM 102.9 MHz पर। दोस्तों, इस बार अभी हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि आकाश आजादी के वक्त हमारे पास सिर्फ 6 स्टेशन थे, जो कि महज 11% आबादी तक पहुंचते थे। लेकिन साल 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक रूप से उसका सबसे प्यारा नाम मिला, जिसे आज आप और हम सब कहते हैं आकाशवाणी। और फिर आया वो दिन जिसने भारत में मनोरंजन की दुनिया ही बदल दी। उस दौर में विदेशी स्टेशन रेडियो सिलोन का उन दिनों में बहुत प्रभाव था। उसके बढ़ते प्रभाव को थोड़ा सा कम करने और हिंदी फिल्मी संगीत को बढ़ावा देने के लिए 3 अक्टूबर 1957 को शुरुआत हुई विविध भारती की। मुंबई और मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, उस वक्त वहां पर शुरू हुई ये सेवा आज करोड़ों लोगों की पसंदीदा बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि विविध भारती पर बजने वाला सबसे पहला गीत कौन सा था? कुछ याद आया? चलिए मैं बता देता हूं। तो विविध भारती पर बजने वाला सबसे पहला गीत था नाच मयूरा नाच, और इस गीत में आवाज थी मन्ना डे की। यह एक गैर फिल्मी हिंदी गीत था और इस कार्यक्रम के, यानी कि उन दिनों में इसके पहले उद्घोषक थे शील कुमार जी। उसके बाद मेलवेल डिमेलो, देवकीनंदन पांडे, अमीन सयानी, सुरेश सरैया और जसदेव सिंह, इन सबकी आवाजें तो हमने सुनी होगी कभी ना कभी। ये वो नायक हैं जिनकी आवाजें ही इनकी पहचान बन गई। किसी की आवाज में खबर थी, किसी की कहानी थी। किसी की आवाज में खबर थी तो किसी में कहानी थी। बिना चेहरे ही, बिना चेहरा देखे ही दुनिया जिनकी दीवानी थी। तो उन सभी महान उद्घोषकों को समर्पित करते हैं हम इस कार्यक्रम का चौथा गीत। फिल्म का नाम हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम सुनते हैं गीत, और तब तक आप फिल्म का नाम अंदाजा लगाइए कौन सा होगा, फिल्म कौन सी होगी। हालांकि अधिकांश श्रोता तो फिल्म को पहचान ही जाएंगे।

नाम गुम जाएगा। फिल्म किनारा से इस गीत को भी हमने सुना। यदि आपने भी अनुमान लगाया था कि इस फिल्म का नाम किनारा होगा तो आपका अनुमान एकदम सही रहा। इस गीत में आवाजें थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र कुमार की, आरडी बर्मन का संगीत था और गुलजार के बोल थे। दोस्तों, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, जिसे आपने ट्यून किया है FM 102.9 MHz पर। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं आकाशवाणी के गौरवमयी सफर की। तो दोस्तों, 70 के दशक में टीवी पर आने लगा कि रेडियो की अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन मीडियम वेव यानी कि MW से लेकर शॉर्ट वेव जिसे हम SW भी कहते हैं, इनकी उच्च गुणवत्ता तक रेडियो ने साबित कर दिया कि वो अमर है। 23 जुलाई 1977 को चेन्नई में FM चैनल आया और 1993 में निजी FM ने धूम मचा दी। और आज तो रेडियो डिजिटल होकर हमारी जेब में मोबाइल के जरिए सवार हो चुका है। तो इसी बदलते परिदृश्य में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इसे हमने चुना।

है फिल्म आराधना से। किशोर कुमार की आवाज़ है, आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू के साथ।

दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून का कथन आज भी सत्य है कि रेडियो हमारा मनोरंजन करता है, हमें शिक्षित करता है और सारी दुनिया में लोकतांत्रिक बदलावों को प्रोत्साहित भी करता है। आज आकाशवाणी 27 भाषाओं में 250 से अधिक स्टेशनों के साथ देश की 99% आबादी को एकता के सूत्र में पिरो रखा है। 90 साल का ये सफर भारत की धड़कन का सफर है। वक्त की आंधियों में जो कभी बुझ न पाया, वक्त की आंधियों में जो कभी बुझ न पाया, वो एक चिराग है रेडियो, जिसने सबको ये राह दिखाया। इसी विश्वास के साथ आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारू आपसे अनुमति लेता है। इस कार्यक्रम से आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मेरे सभी प्रिय साथियों को आज की शाम का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन विषयों पर जो हमारी जिंदगी को सुंदर और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार

जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमने सुकून की असली मायने ही कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन, काम की थकान और जिम्मेदारियों के बीच हम ये भूल जाते हैं कि असली शांति कहाँ मिलती है। लेकिन कभी सुबह की ठंडी हवा को महसूस करके देखिए, कभी पेड़ों की छांव में कुछ पल बैठ कर देखिए, कभी पक्षियों की मीठी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्रकृति बिना कुछ कहे भी हमारे मन को सुकून देना जानती है। जब हम प्रकृति के करीब आते हैं तो मन हल्का सा लगने लगता है, चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और दिल को एक अलग ही शांति महसूस होती है। यही छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। कभी सुबह उठ के सूरज की पहले किरण को देखिए, कभी शाम की ठंडी हवा में टहल कर देखिए। यकीन मानो दोस्तों, प्रकृति के पास हर थके हुए इंसान के लिए सुकून है। आज जरूरत है हम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालें और प्रकृति के करीब जाएं, एक पेड़ लगाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को और सुंदर बनाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी सबसे खूबसूरत साथी भी है। और इसी प्यारी सोच के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी भाविका, और आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पौधों के स्वास्थ्य और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। स्वस्थ पौधे न केवल हमें भोजन, ऑक्सीजन और औषधियां प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बदलते मौसम और प्रदूषण के कारण पौधों पर खतरा बढ़ रहा है, इसलिए उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उनकी सही देखभाल करके हम प्रकृति को सुरक्षित और हरा भरा बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सेस के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नर्सेस मरीजों की देखभाल, सेवा और उपचार में दिन रात समर्पित रहते हैं। वे अपने धैर्य, मेहनत और मानवता से लोगों को नई उम्मीद और साहस देते हैं। अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये दिन उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर सुनते हैं भेंट वार्ता। हमारे आज के मेहमान हैं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रिंसिपल राकेश झिंगर से बातचीत कर रहे हैं सीताराम महावर।
5: नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के उपलक्ष्य में आज बात करते हैं राकेश कुमार झिंगर से, जो कि प्रिंसिपल हैं नर्सिंग कॉलेज चित्तौड़गढ़ में। राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार सर।
5: राकेश जी, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए आज के दिन का कितना महत्व बढ़ जाता है।
6: सर, नर्सिंग समुदाय के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस कारण भी है कि जो हमारे आधुनिक नर्सिंग जो है उनकी जो जन्मदात्री है, जिनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आज उनका जन्मदिवस है, और उन्हीं की जन्मदिवस की एनिवर्सरी की याद में, उनके समाज को दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन की याद में, और पूरे नर्सिंग समुदाय जो जिस कर्तव्य निष्ठता से इस पूरे समुदाय की सेवा करता है, उनकी याद के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम नर्सिंग दिवस मनाते हैं, और उन्हीं को हम समर्पित करते हैं नर्सिस दिवस को भी।
5: चिकित्सा व्यवसाय बहुत ही नोबल व्यवसाय माना जाता है।
6: जी सर।
5: किसी की जान बचाना, किसी की सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कार्य भी नर्सिंग प्रोफेशनल से जुड़े हुए कार्मिक आसानी से करते हैं।
6: सर, इसका एक बहुत बड़ा जो हम योगदान दे सकते हैं वो है कि नर्स को जब तैयार किया जाता है तो उनकी ट्रेनिंग इसी प्रकार से की जाती है, और उनको उनका थियरी है, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है, वो उसी प्रकार से उन बच्चों को तैयार किया जाता है कि जब वो चिकित्सा क्षेत्र में जाएंगे आगे भविष्य में, तो उसी तत्परता से, उसी डेडिकेशन के साथ में लोगों की सेवा में लगे रहें, क्योंकि वो पहले देखते हैं, जब वो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तो अपने सीनियर्स को उस क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ना समय देख रहे हैं, ना उनकी किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने जब भी एक पेशेंट आता है तो उनका काम यही रहता है कि इसको मैं किस प्रकार से पुनः उसी अवस्था में ले पाऊं जिससे कि वो एक समाज में एक स्वस्थ नागरिक के रूप में वापस खड़ा हो सके।
5: धैर्यवान युवा इस क्षेत्र में यदि आगे आते हैं, कितना उपयोगी उनके लिए हो सकता है?
6: सर, पेशेंस तो एक सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं, हर एक व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा की रोल है, लेकिन पेशेंस होना इसलिए भी जरूरी है कि पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो सिर्फ सामान्य पेशेंट नहीं आते हैं, बहुत बार आपके पास में ऐसे मरीज भी आते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में रहते हैं, एक्सीडेंट्स में आते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स के पेशेंट्स आते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट्स आते हैं, तो उस समय आपको अपना पेशेंस रखना, सिंपैथी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को आप रखेंगे तो आप उनकी सेवा बहुत ठीक से कर पाएंगे और मरीज को जल्दी ठीक कर पाएंगे।
5: किस तरह के लोग इस व्यवसाय में अच्छे सफल व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं?
6: सर, टेक्निकली देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ाई में ठीक कर रहे हैं, क्लिनिक

0: क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिनका बहुत अच्छा है, और हम हमारे बच्चों को भी या स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं उनको भी हम यही कहते हैं, ये प्रोफेशन एक ऐसा है जो आपको जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप तैयारी करते हैं और जितना आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं अस्पताल के अंदर, उतना ही आप अच्छे साउंड और अच्छे नर्स बाद में भविष्य में कहलाते हैं। और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर नर्स तैयार होते हैं। सर,
1: एक नर्सेस को किस किस तरह के कार्य करने होते हैं?
0: सर, नर्सेस के लिए देखा जाए तो अस्पताल में हर प्रकार का कार्य नर्स के लिए कार्यक्षेत्र में आता है। पेशेंट का एडमिशन से लेकर पेशेंट का डिस्चार्ज है, पेशेंट की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो उस पेशेंट को एक शांतिपूर्वक मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं, हमारे नर्सिंग का डेफिनेशन भी जो हमको बताता है, शांतिपूर्वक मृत्यु तक उसको पहुंचा पाना। लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जब पेशेंट किसी नर्स के कॉन्टेक्ट में रहता है, अस्पताल में जब रहता है, तो उसकी बड़े ही टेक्निकल रूप से और बहुत ही क्लिनिकल रूप से उसको उतना केयर देना जिसका वो हकदार है। हर एक प्रकार की केयर जिसमें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने क्रिटिकल केसेस आते हैं, वो कार्य एक नर्स करती है। तो आप देख सकते हैं कि जब अस्पताल में जाएं तो हम जिसको देखने पे ही लोग घबरा जाते हैं, नर्स उसको काम को बहुत धैर्य के साथ में, बहुत कर्तव्य के साथ में निभाती है। और उसी का परिणाम है कि लोग और समाज में स्वस्थ लोग बाहर देख पा रहे हैं।
1: कई बार हमारा शरीर साथ नहीं देता, उस समय एक नर्स हमारा सभी काम कर रहे होते हैं।
0: जी, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है जब हम नर्सेस को तैयार भी कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हम जिसको बोलते हैं। और दो और चीजें आती हैं जिसको हम सिंपैथी और एम्पैथी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उसको उस प्रकार से ट्रीट करना कि, क्योंकि वो जो समय और वो जो एरिया जहां पे पेशेंट है वो उसके लिए नया है, नर्स के लिए वो रोज का काम है। लेकिन उस दौरान उस पेशेंट को ठीक बनाए रखना, उसको अपने शरीर के बारे में पॉजिटिवली सोचना, और जितना पेशेंट अपने शरीर के बारे में स्वस्थ होने के लिए जितना सोचेगा, क्योंकि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर निवास करता है, ऐसा सभी जानते हैं। और ये बात बहुत तार्किक रूप से सही भी है कि अगर आपका शरीर आपके लिए साथ दे रहा है तो दवाई बहुत ठीक तरीके से असर करती है, इसके कई रिसर्च भी प्रमाणित है। तो अगर आप साइकोलॉजी उसको ठीक से प्रोवाइड करते हैं, उसको ठीक से ट्रीट करते हैं, अपनापन जिसको हम कहते हैं, अगर उस प्रकार से आप ट्रीट करते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
1: मरीज की सेवा करते हुए हम नर्सेस को देखते हैं, ये किस तरह से तैयार होते हैं?
0: सर, नर्सिंग प्रोफेशन में आने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कोर्सेज संचालित हैं। अगर हम छोटे तौर पे ही देखें या शुरुआती तौर पे देखें तो बेसिक क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, जो 12वीं पास छात्र जो भी हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के कोर्सेज में अलग अलग योग्यताएं चाहिए, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज, जैसे हम ANM का कोर्स होता है, एक GNM का कोर्स होता है जो डिप्लोमा कोर्सेज है, और उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हम जाना चाहें तो BSc नर्सिंग कोर्स है, MSc नर्सिंग है। इसमें अब क्योंकि पिछले काफी समय से रिसर्च काफी बढ़ गई है तो अब PhD भी नर्सिंग के अंदर हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं जो इस प्रोफेशन को और आगे लेके जा रहे हैं। रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं कि जितना एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करें कि कौन सी चीजें मरीज की बेहतरी के लिए ठीक है।
1: आने वाले दौर में हर क्षेत्र में चुनौतियां मौजूद रहती है और हो जाती है, यूं कहा जा सकता है।
0: जी,
1: नर्सिंग क्षेत्र की बात करते हैं तो किस तरह की चुनौतियां इस व्यवसाय में युवाओं को आ सकती है यदि वे करियर के रूप में इसका चुनाव करते हैं तो?
0: सर, दो या तीन बड़ी हम समस्याएं कह सकते हैं या चुनौतियां कह सकते हैं। उनमें से एक है जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है नर्सेस का हमको चाहिए समाज में, उतना नर्सेस तैयार नहीं हो पा रहे हैं, या तैयार हो रहे हैं तो उनके लिए उतना अवसर सब जगह मिल पाना वो मुश्किल है। WHO का एक रिपोर्ट कहता है कि पूरे विश्व के तौर पर लगभग 6.5 मिलियन नर्सेस का शॉर्टेज है, तो इस संख्या से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्राइसिस है। और उस क्राइसिस का एक परिणाम जो है वो ये है कि ओवरलोड जिसको हम बोलते हैं, हर उस नर्स के ऊपर, एक हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर उतना वर्कलोड मिलता है। वर्कलोड की वजह से पेशेंट को जितना समय मिलना चाहिए, एक नर्स के द्वारा दिया जाना चाहिए जब वो केयर करती है, वो समय थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से क्वालिटी केयर पे इम्पैक्ट पड़ता है।
1: देश की बात करें तो रोजगार की कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं?
0: सर, ये नर्सिंग समुदाय या नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे रोजगार आप किसी भी प्रकार से पा सकते हैं, अगर बच्चे ने ठीक से मेहनत करी है, ठीक से प्रैक्टिस करी है। क्योंकि जैसे GNM कोर्स जो 3 साल का है, उसको करने के बाद भी बच्चा तैयार है किसी भी अस्पताल में काम करने के लिए, और BSc नर्सिंग का जो डिग्री कोर्स है, उस 4 साल का जो कोर्स है, उसको करने के बाद भी बच्चा तैयार है समाज में आने के लिए, अस्पताल में काम करने के लिए, नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी के रूप में काम करने के लिए।
1: और विदेश की बात करें तो वहां पर कितनी संभावनाएं और बढ़ जाती है नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए?
0: सर, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे नर्सेज का शॉर्टेज है, तो विदेशों में भी जो प्रोफेशनल नर्स हैं, जो साउंड नर्सेज हैं, उनका बहुत रिक्वायरमेंट है। और आज भी बहुत सारे बच्चे तैयार होकर बाहर काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अभी

0: रिक्वायरमेंट है सर, ये प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नर्सेस बहुत आयत में उपलब्ध हैं, हमेशा शॉर्ट ही मिलेगा।
1: एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखें तो एक नर्स इंजेक्शन लगाता है तो दर्द होता है, और वही दूसरी नर्स लगाता है तो दर्द नहीं होता। ये स्किल किस तरह से डेवलप होती है
0: सर? ये चीज क्योंकि प्रैक्टिस में तो सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है, ये कुछ जो काम करता हूं, जैसे हमने पूर्व में बात की साइकोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं कि मरीज के दिमाग में भी रहता है कि मैं पूर्व में इस नर्स से अगर अपना उपचार करा चुकी हूं जो मेरे लिए हित में काम कर रही है, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल उस इम्पैक्ट में काम करने लग जाती है। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत साउंड बनाती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना ही हैंडफुल होता है, इसी को हम बोलते हैं स्किलफुल ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही एक मात्र स्रोत है आपकी प्रैक्टिस के लिए काम करने के लिए।
1: जी एनएम की बात करें, एनएम की बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें, कितना समय लगता है और कितना खर्च वहन करने की आवश्यकता पड़ती है?
0: सर अभी वर्तमान में अगर हमारे राजस्थान राज्य की ही बात करें तो एएनएम 2 वर्ष का कोर्स है और जीएनएम डिप्लोमा कोर्स जो है वो 3 वर्ष का है और बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 वर्ष का है, और तीनों ही कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए 12वीं एक योग्यता है। एएनएम और जीएनएम के लिए आपको 12th के साथ में किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं, प्लस बीएससी के लिए आपको साइंस बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है और एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो एएनएम कोर्सेज जो हैं वो लगभग राजकीय जितने भी कॉलेज हैं वहां पे संचालित है, तो वहां पे बहुत मिनिमम फीस है जो कोई भी बच्चा वहन कर सकता है। जीएनएम की अगर हम बात करें तो लगभग 15 या 16 जिलों में राजकीय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पे जीएनएम कोर्स संचालित है, वहां पे बहुत मिनिमल फीस है, लगभग 5 या 10 हजार रुपए, और प्राइवेट क्षेत्र में जीएनएम का फीस अभी इस सत्र के हिसाब से देखें तो लगभग 60 से 70 हजार रुपए के आसपास प्रतिवर्ष है। बीएससी नर्सिंग कोर्स का फीस प्राइवेट क्षेत्र में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज्यादा है, जो कि लगभग 90 से 95 हजार प्रतिवर्ष है। राजकीय महाविद्यालयों में ये फीस 20 हजार से 50 हजार के बीच में आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं, उस छात्र के ऊपर लगभग 20 से 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष का फीस का भार वहन होता है।
1: किस तरह के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बन जाती है, क्या क्या गुण उनमें होने आवश्यक है?
0: गुण तो बहुत सारे होने चाहिए आपको एक अच्छा नर्स बनने के लिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका डिसिप्लिन है, आपकी कार्यक्षमता है, आपका कमिटमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी सिंपैथी, आपका एम्पैथी, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका प्रैक्टिस किस प्रकार से जा रहा है, आप एजुकेशनल वाइज कितना साउंड हो रहे हैं, कितना अच्छे से सीख रहे हैं, उसको वापस इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है एक ठीक नर्स अच्छा नर्स बनने के लिए।
1: कई बार टकराव होते हैं मरीज के परिवार के बीच और प्रोफेशनल्स के बीच, इस टकराव को किस तरह से रोका जा सकता है?
0: सब मध्यस्थता ही एकमात्र तरीका है, बातचीत में अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की संभावनाएं आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है मरीज के परिजन हैं, मरीज हैं, क्योंकि वो उस गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं तो उनकी मानसिकता अलग प्रकार से होती है। नर्सेज क्योंकि रोज उस चीजों से डील कर रही है तो उनके लिए वो एक सामान्य चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रोज का काम है उनका तो वो उसको वैसा नहीं दिखता। लेकिन अगर भाषा में संयम हो तो मुझे नहीं लगता कि, और आपका कार्य अगर ठीक है तो इन परिस्थितियों से बचा सकता सर।
1: एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है ताकि बहुत कम बार उसे अस्पताल जाना पड़े, या यूं कहें कि स्वस्थ वह रह सके?
0: सर जब हम छोटे थे तो हमको यही पढ़ाया गया है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर निवास करता है, और जो छोटी चीजें छोटी छोटी बातें हमको नैतिक शिक्षा के तौर पे बताई गई है, व्यायाम है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, जीवन शैली, आज के समय में जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन शैली के ऊपर काम करना, जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, बाहर के खानों को अवॉइड करना है, उनको छोड़ना है, तेल मसाले जो आजकल बहुत एडल्ट्रेट आ रहे हैं, मिलावटी आ रहे हैं, इन चीजों को अवॉइड करना, अगर आप ये करते हैं और ठीक से स्वस्थ रहते हैं तो सर बहुत संभावना है कि आपको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: व्यायाम को लेकर कोई राय रखना चाहेंगे?
0: सर अगर आप प्रतिदिन 20 मिनट भी अपने शरीर को देते हैं व्यायाम के तौर पे, आप कुछ भी करें उसके अंदर, आप तेज दौड़े, धीरे दौड़े, थोड़ा शरीर को कसरत के तौर पे काम में लें, तो भी बहुत संभावना है कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं आपके शरीर के लिए काम करेगी।
1: जब कभी मरीज के रूप में एक सामान्य व्यक्ति का नर्स से सामना हो, व्यवहार कैसा होना चाहिए?
0: व्यवहार बड़ा ही शालीन होना चाहिए सर, और ये शालीनता बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है कि पेशेंट जब पहली बार किसी भी नर्स को या किसी हेल्थ प्रोफेशनल को मिलता है तो अगर नर्स उसको ठीक से ट्रीट करती है व्यवहार के तौर पे, तो आधे जो बीमारी है मरीज की वो वहीं पे खत्म हो जाती है, बाकी बची कुछ जो है वो पेशेंट का जो केयर मिलता है नर्स के द्वारा उस अस्पताल के ट्रीटमेंट के दौरान, उससे ठीक हो सकती है सर।
1: और मरीज का व्यवहार
0: ये भी काफी मायने रखता है सर। तो हम तो जनता से अपील

0: करते हैं कि जब आप अस्पताल में आए तो इस चीज को जरूर देखें कि वो नर्स कितने पेशेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं, कितने लोगों पे काम कर रही हैं, किस परिस्थिति में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि नर्स फ्री बैठा है और आपके लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास काफी सारा काम रहता है। लेकिन फिर भी इस टकराव की स्थिति को तो नहीं आना चाहिए किसी भी तौर पर, ये ठीक नहीं होगा।
1: राकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक अंत के तौर पे मैं सभी जो हमारे राजस्थान के और पूरे भारत में जो भी नर्सेज हैं, मैं सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।
2: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रिंसिपल राकेश जिंगर से। बातचीत कर रहे थे सीताराम महावर।

दोस्तों, धरती की सुंदरता केवल पहाड़ों, पेड़ों और आसमान से नहीं होती, बल्कि बहती हुई नदियाँ भी इसे जीवन और सुंदरता प्रदान करती हैं। नदियाँ प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो मानव जीवन और पशु पक्षियों के लिए बेहद खास मानी जाती है। इन्हीं नदियों में से एक खास नदी है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी राजस्थान की प्रमुख स्थानीय नदियों में से एक मानी जाती है। इसका उद्गम अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों से माना जाता है और ये आगे चलकर बेड़स नदी में मिल जाती है। ये नदी हमारे शहर चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखती है। गंभीरी नदी मुख्य रूप से किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। इसके किनारे बसे गांवों में खेती किसानी का बड़ा आधार इसी नदी के जल पर निर्भर करता है। बारिश के मौसम में जब इसका जल स्तर बढ़ जाता है, तब इसके आसपास की हरियाली, बहता स्वच्छ जल और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण और जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। लेकिन आजकल बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और पानी की बर्बादी हमारी नदियों के अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें, जल का सदुपयोग करें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बने, क्योंकि जब नदियां सुरक्षित रहेगी तभी प्रकृति की सुंदरता और जीवन की खुशहाली भी बनी रहेगी।

दोस्तों, देश और दुनिया में बदलती परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देशवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए और देश हित में छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने, अनावश्यक खर्च कम करने और वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ कर छोटा सा योगदान दें तो देश आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बन सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का ये संदेश हमें बचत, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज का हमारा सफर बस यहीं तक का था। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई बात नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती करते रहिए। नमस्कार।

0: 20,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मीरा भजन, और कार्यक्रम का पहला मीरा भजन आज आपको सुनवाते हैं चेतना भाणावत के स्वर में।

हरी मेरो जीवन प्राण आधार। चेतना भाणावत के स्वर में इस मीरा भजन को भी आपने सुना। कार्यक्रम विविधा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। कार्यक्रम का अगला मीरा भजन आपको सुनवाते हैं नेहा काला के स्वर में।

दीपशिखा शर्मा के स्वर में इस मीरा भजन के साथ ही कार्यक्रम विविधा अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 6:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 185। गायन स्वर हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर के। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल

की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 185। गायन स्वर थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर के। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। श्री रामचरित मानस गान का अगला भाग आप सुन सकते हैं कल इसी वक्त इसी चैनल यानी FM मीरा पर, FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रही कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय पश्चात यानी शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज यानी कि मंगलवार 12 मई 2026 को सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम का विषय होगा कृषि आधारित कुटीर उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में उद्यमी बने। और इस कार्यक्रम में आज की विशेषज्ञा होंगी दीपा इंदौरिया, विषय विशेषज्ञा कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़। जो भी किसान भाई इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीफोन करके विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01472-294-020 एवं 295-020। श्रोताओं, शाम 7:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम संदेश आते हैं और रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का।

समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 9:15 से रात 10 बजे तक। यदि जानकारी हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की, कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। आइए सुनते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। समाचारों में पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर 6:40 पर जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म व अदब के सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबहस से और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार, बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए

0: 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
1: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से।
0: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा जो सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोड मैप तैयार करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलुम्बर जिले के ओड़ा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी जिलों में भीषण लू का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वन नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
0: इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल

0: की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट प्लांट के रूप में मूंग, अरहर, हेज, करंज और मेहंदी के पौधे काम में लिए जा सकते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एलईडी वैन के माध्यम से रात्रि चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जिले के सज्जनगढ़, पीपलखूट, मोरवानिया, टामटिया, नालचौकी और सागबारी सहित कई स्थानों पर रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को उंबाड़ा गांव में मौके पर ही लाभ दिया गया। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। ग्राम रथ अभियान में कलाकारों के जत्थे प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ये अभियान मिशन मोड पर संचालित हो रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर एचपीवी टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा के डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचाकोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए। जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके

0: मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामलारी जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूल माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बढ़कर 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदू लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक वेवंडी शंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए री ओरू सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान रखता था का करी जियो है। एनटीए रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जांच सारू मामलो सीबीआई ने सौंपण रो फैसलो कीनो है। एनटीए परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान बेगोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी एर मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माए बदलाव नी फैला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी फैला। एनटीए रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबरनवीसा सागे बातचीत करता था का कहो के पूरो पेपर लीक नी भयो पर कुछ सवाल लीक भया। वे कहो के परीक्षा री प्रक्रिया माए चूक री ठा करण सारू सीबीआई ने जांच दीरी जी है।
2: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करें।
1: इन बीच एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न ओजू ली जावेला। इनमें पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 383,000 उम्मीदवार शामिल फै सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इन सारू अर्जिया माए जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी वेवंडी सूरत माए मोबाइल नंबर, ईमेल और पता री जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान माए भणाई लिखाई रा मौजूदा हालात री सराहना करता थका एकीकृत शिक्षा रा हलका माए राज्य ने देश माए अव्वल बतायो है। आयोग कानून जारी रपट रे मुजब राज्य पहली 12वीं कक्षा ताई रे समय के शिक्षा मुहैया करावण रा मामला माए देश भर माए अव्वल है। रपट रे मुजब देश री कुल एकीकृत स्कूल माए राजस्थान री हिस्सेदारी करीब 35% है। देश माए पहले 12वीं कक्षा ताई री तालीम देवण वाली हर तीजी स्कूल राज्य माए चाल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,000

0: 489 स्कूलों में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी ताई शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश री सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करन रे बारा में नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता री पीठ कहो कि नवी शिक्षा नीति 2020 रा तहत मायड बोली या भाषा आधारित भणाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माए पढ़ाई जा रही है तो इनने स्कूला माए पढ़ावन ने स्वीकार करन मत है, कोई सवाल ही नहीं होवनो चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुक्म देता था का कहो कि इनने शुरुआती लेवल माथे भणाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावन रे बारा माए विचार करियो जावनो चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थान रा जानकारा री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पतालां रो दौरो करेला। टीम आ अस्पतालां माए ऑपरेशन थिएटर माए लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारा माए जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माए चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटारा सरकारी अस्पताल में लाडला दिना जापा वाली कुछ लुगाइयां री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा ऐडा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुकम दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पताल रो दौरो कर व्यवस्था में जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त री सदारत में खास समिति बनावन बाबती कहो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मध्य पूर्व में चल रही तनातनी बीच भारत देश में रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिना रा लेवल नु बधार 54,000 टन कर दिनो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि कई देशों ने लाडला कुछ महीना माए कीमता माए बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनो पड़ियो जदके भारत घरेलू मूल माए थरता राखण माए कामयाब रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचार माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वह आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में अहलकारा सागे मीटिंग में बोल रहा है। ई मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय में विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपया। वह विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए रा खर्च बनाई जा स्वास्थ्य केंद्र छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन कीनो। वठे अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने असरदार तरीका लागू करण बाबत कहो। राज्य सरकार कानी जनता रा भला सारू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पूगावण सारू ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इना तेत सलूमर जिला रा ओडा और अदवास समेत कई गांव माय कार्यक्रम राखी जा जठे लोक कलाकार योजनावां री जानकारी गीता और नुक्कड़ नाटका रे जरिए आसान भाषा माय दीनी। बाड़मेर जिला में आई ई अभियान सारू खास उमाव नजर आ रियो है। और ब्यूरो महाना खबर नवीसू।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आमजन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर।
0: जोधपुर रो 568वां स्थापना दिवस आज हर कुमाऊं सागे मनाई चियो। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में राखी जा खास जलसा में न्यारा न्यारा हलका में चोखो काम करने वाला

0: 19 जणा ने मारवाड़ रत्न नवाजी चिया। इनु पहले मेहरानगढ़ अर्जसवंत थड़ा माए शहीदा ने फूल चढ़ार सिरधा भाव सागर याद करी चिया। ई मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी। ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 माए जोधपुर बसायो हो। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान री सरहदों लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है। आज बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। जैसलमेर और बालोतरा माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो। इन अलावा बीकानेर और जोधपुर माए लू बाज रही है। कोटा बारां झालावाड़ चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ माई पड़ रहा जोरदार तावड़ाऊ जिंदगी माथे असर पड़ रो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हल्का माए लू रो दौर आवता 3-4 दिन ताई चाल तो रहवन रा आसार है।
1: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है।
0: इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हल्का माए आज हुई बिरखाऊ गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। भरतपुर माए दोपहर पाछे बरसात हुई। धौलपुर अलवर चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला माए अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो। नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला माए ओ दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा में 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा। प्रदेश में आई नर्स दिवस रे मौके कई कार्यक्रम राखी जा। झुंझुनूरा बीडीके अस्पताल में चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो। इस मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियों री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी।
2: आज जो हमारी नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने सफल बने और इस अवसर पर नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूला माए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया माए चाल रही तनातनी बीच भारत माए घरेलू गैस रो उत्पादन बढ़ 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागुड़ा जिला माए जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात। बाड़मेर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं इस वक्त शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?

0: पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बिना ने मारी रुक्मणी की ओर गणो गणो राम राम सा।
6: और रुक्मणी बहन के साथ साथ मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा।
5: राम राम मोहन भाई, राम राम।
6: राम राम सा रुक्मणी बहन।
5: देखो मोहन भाई, आज है मंगलवार और आज लेन आया हूँ आप ही सजी फोन इन कार्यक्रम। आज कार्यक्रम को विषय है कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी बने,
6: और अनादो विषय के ऊपर जानकारी देने के वास्ते आज अपना स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीपा इंदौरिया जी ने है। आप हैं कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में। तो दीपा इंदौरिया जी, माँ के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा।
7: राम राम सा।
6: जो भी किसान भाई दीपा इंदौरिया जी हूँ सीधी बातचीत करना चाहे कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी किसान बना, तो वे माँ का कार्यक्रम में फोन कर सके सा। माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472-294020 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020।
5: दीपा इंदौरिया जी, देखो आप ही बात कर रहे हैं कृषि आधारित कुटीर उद्योग के बारे में। तो अपना जो किसान भाई है वे खेती बाड़ी करे हैं, तो खेती बाड़ी एक खूब बड़ो और पारंपरिक तरीको है। पर देखो इके लारे लारे अगर किसान भाई कुटीर उद्योग भी करना चाहे खेती के लारे लारे, तो कसी कसी चीजा या कई कसी चीजा है जाने कुटीर उद्योग भी शुरू कर सके है सा।
7: जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वो कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हम बात करें तो सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, डेयरी है, फूलों की खेती, नर्सरी, जैविक खेती, मशरूम कल्टीवेशन, मधुमक्खी पालन, काउडग की जो सेलिंग होती है, या जो उत्पादों की जैसे अपने कृषि उत्पाद होते हैं उनकी पैकेजिंग। ये 8 से 10 ऐसे हमारे कार्य हैं जिनको हम कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
6: दीपा जी, जिसान की ये चीजें आप बताई है, इनके साथ में ने कही है कि जो भी किसान भाई है, मान लो जैसे वणा के खेत में ने कड़ी एक चीज को उत्पादन वे ज्यादा ज्यादा कर रहा है, तो वणी को मूल्य संवर्धन कर और वणी ने अगर कुटीर उद्योग के रूप में ने स्थापित अगर वणा ने करनो छावे, तो वणी जगह पर कही देखो बहुत ज्यादा वणा ने तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़े, क्योंकि देखो कोई भी काम करा तो विका वास्ते अगर आपने जो नॉलेज है वह अगर नॉलेज पूरी नहीं रहेगा तो वे सके कि वो जो कोई भी बिजनेस या धंधो वो करवाएगी सोच रहे है तो आगे सफल वेगा या नहीं वेगा वंडी कोई गारंटी नहीं है। तो इनके वास्ते अगर इन्हें तकनीकी ज्ञान जो लेनो है तो वो सबों पहले तो कटे संपर्क करें, और वंडा वास्ते वंडा आवश्यक दस्तावेज कई कई जरूरत पड़ेगा।
7: जब भी किसी किसान महिला या किसान भाई को ये काम कुटीर उद्योग प्रारंभ करना हो, तो सबसे पहले उसे आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की, जिसको हम तकनीकी जानकारी कहते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़, जो कि रिठोला टोल नाके पे स्थित है, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और जो इस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं उनके समाप्ति पर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको जब भी आप कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती है उससे मूल दस्तावेज ये कार्य करता है। इसके अलावा जो आपके जो व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपके जो जहां भी आपको ये कार्य शुरू करना है उस जमीन के कागजात हो गए, आपका मूल निवास हो गया, जो भी आपके व्यक्तिगत जो कागजात होते हैं, और इसके अलावा जो आप कार्य शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो कुछ लाइसेंस होते हैं, जैसे अगर आपको खाद्य से रिलेटेड कोई कुटीर उद्योग प्रारंभ करना है तो जो FSSAI वो लाइसेंस होते हैं, और भी जो संबंधित लाइसेंस होते हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप ये

0: शुरू कर सकते हैं।
1: दीपा अंदर जी, देखो आप इनके बारे में बता रहे हो, लेकिन सरकार की तरफ कई कई सुविधा अड़ाने मिल सके कुटीर उद्योग स्टार्ट करवा के लिए?
0: देखिए, सरकार में 3-4 योजना ऐसी चल रही हैं जो खास तौर से प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहे हैं और कुटीर उद्योग भी लगाना हो तो उसमें भी वो उसकी मदद करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं PMFME की। तो ये स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% सब्सिडी प्रदान करते हैं और इसके अलावा 10 लाख का सपोर्ट भी करते हैं। और उसके अलावा ये लोग जैसे बैंक लोन में जो भी फॉर्मेलिटीज़ चाहिएंगी और ट्रेनिंग भी करवाएंगे और आपका जो ब्रांड जो तैयार होगा उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इसमें इस प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे आपका ये हो गया, जितने भी मसाला प्रोसेसिंग हो गया, पिकल हो गया, पापड़ हो गया, बड़ी हो गया, या आपको अगर तेल मिल लगानी है या आपको दालों की मिल लगानी है तो उसमें ये योजना काम आती है। दूसरे नंबर पे आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये थोड़ा सा उससे ऊपरी स्तर पे होता है। ये लार्ज फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी, जैसे कि जो बड़ी यूनिट लगानी है उस पर ये काम आती हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी आता है। और इसके लिए जो पैकेजिंग यूनिट होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, क्लस्टर्स होते हैं, जैसे जो आटा बनाने की यूनिट्स होती हैं, उसके लिए ये योजना काम करती हैं। और जो तीसरी आती है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये ज़्यादातर बागवानी फसलों के लिए होती है, जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। चौथी होती है मुद्रा लोन योजना। मुद्रा लोन योजना सबसे बढ़िया इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है और इसे किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी लिंग का और किसी भी व्यक्ति को ये आसानी से ये मुद्रा लोन योजना का फायदा मिल सकता है। तो ये 3-4 योजनाएं हैं जो हमारे अगर किसान भाई या बहन इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं।
2: दीपा जी, आप जो बताई है वो सरकारी योजना के बारे में बताया है और लघु उद्योग और बड़ा उद्योग का बारे में आप बात की दी है। वन मैंने कही देखो सरकार की तरफ कुछ आर्थिक सहयोग भी मिले और वड़ाने का एक सब्सिडी भी मिले।
0: जी बिल्कुल।
2: पर कुछ शिक्षित बेरोजगार ऐसा है जो मतलब बहुत ही छोटा स्तर पर मतलब वणी ने काम ने करनो छावे और वण में लागत वणारे बहुत कम वे और कागजी प्रक्रिया बहुत कम वे। तो अणी तरीका के अच्छा कशा उद्योग है जैसे किसान भाई है या कुछ युवा लोग है जो अना मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी है तो वे वणी उद्योग ने शुरू कर सके?
0: देखिए, सरकार ने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो ये जो हम जब बात करते हैं कुटीर उद्योग की, तो कुटीर उद्योग का मतलब यही होता है कि घरेलू स्तर पर जो मतलब छोटे कार्य किए जाते हैं, छोटे स्तर पर कार्य किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, उसी को हम कुटीर उद्योग कहते हैं
2: जी।
0: तो और ये जो कुटीर उद्योग में जो भी फॉर्मेलिटीज, जिसको हम औपचारिकता भी कहते हैं, औपचारिकताएं ऐसी होती हैं, बहुत साधारण औपचारिकताएं होती हैं जिसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी जटिलताएं नहीं है। इसमें जो भी जो जानकारी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आम तौर पर हर व्यक्ति के पास होते हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं या हम राजस्थान के जो भी निवासी हैं, वो सारे साधारण, बहुत ही साधारण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आसानी से उनको उपलब्ध भी हो जाएंगे। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग की, जिससे अपन ने 8 से 10 जो कार्य ऐसे बताए जो कुटीर उद्योग के रूप में है, तो ये इतने ये कम पूंजी पे शुरू होने वाले कुटीर उद्योग है
2: जी,
0: है ना, इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा
2: जी। रुक्मणी बहन, आपनो कार्यक्रम जो भी किसान भाई हुन रिया है वणा ने कार्यक्रम का फोन नंबर आप एक बार और बता दा, 01472-294020 और अपनी दूसरी लाइन का नंबर है 295020। दीपा इंदौरिया जी, पिछला दिनों आकाशवाणी का कुछ लोग जैसे फील्ड वगैरह में गया तो 2-4 ऐसा शिक्षित लोगों मां को संपर्क हुयो जो लगभग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका है और RS IAS की तैयारी वे लोग कर रहा है, लेकिन वणा कही है कि एग्रीकल्चर ने अपनो आय को स्रोत बनायो। जणी मैंने कही है वणा जैसे उन्नत बीज की नर्सरी तैयार करी, जैसे मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है और पपीता का पौधा भी वणा तैयार की दा, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी वणा तैयार की दी है
0: जी।
2: तो ये अणी तरीका का अगर कोई व्यवसाय शुरू करे तो वंडा वास्ते कहीं लाइसेंस या कई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े?
0: जी बिल्कुल। जैसे अगर मैंने जैसे इन 8 से 10 कार्यों में ये भी कार्य बताया था, तो अगर हमें अपनी नर्सरी प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले तो नर्सरी प्रबंधन का 15 से 1 महीने का कोर्स होता है
2: जी।
0: उसके पश्चात उनको सर्टिफिकेट मिलता है और फिर जब आप नर्सरी प्रारंभ करते हैं तो उस नर्सरी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना

0: पड़ता है एनएचबी से
1: जी।
0: एनएचबी का मतलब है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अगर आप उसके बगैर वो नर्सरी चलाएंगे तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको कुछ कानूनी समस्याओं का कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप नर्सरी शुरू करें तो उसका प्रॉपर तरीके से आप पहले एक जो कोर्स होता है कागजी कार्रवाई कम्प्लीट करिए, उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो सरकारी योजना है उनका आप लाभ ले सकेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देती हूँ कि जैसे अभी हर मतलब जून जुलाई अगस्त में जब भी अपना जो सावन मास शुरू होता है तो उसमें हमने वृक्षारोपण का कार्य शुरू होता है, तो उस दौरान कुछ कार्यालयों को या कुछ संस्थाओं को ये पाबंद किया जाता है कि आप सरकारी नर्सरियों से ही अपना जो वृक्ष या पौधे खरीदेंगे। तो अगर हमारा किसान भाई या बहन अगर रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है तो वो आसानी से अपना पौधा उनको बेच सकता है या वो व्यक्ति वहां से खरीद सकता है। तो इस तरीके से उसको बहुत सारे अगर प्रॉपर तरीके से करेगा तो उसको फायदा ही होगा, और इनमें कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण तरीके से वो आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
1: बहुत छोटो सा सवाल है दीपा इंदौरिया जी कि भाई अगर मान लो कोई शिक्षित बेरोजगार है और खेती में वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखे और वन्य अगर मान लो कोई यूनिट स्थापित करनी है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई रहेगा और सबों पहली भी निकट संपर्क करना पड़ेगा।
0: देखिए अगर ऐसा है कि अगर उनको ऐसा करना है कि भाई मान लिया हमारी हम किस जैसा मशरूम की बात करते हैं
1: जी,
0: ठीक है, तो मशरूम सबसे पहले तो मशरूम कल्टीवेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। उसके लिए जो हमारा विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है वहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी विभाग है, वहाँ से वो मशरूम कल्टीवेशन की 5 दिन की ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे
1: जी।
0: और उसके साथ ही ये सब ई मित्र पर ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है
1: जी।
0: और इसके अलावा जैसे अगर सिंपल वो मशरूम कल्टीवेट कर रहे हैं तो एक तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसमें, है ना, और उसके साथ साथ एक ये भी क्योंकि जब हम नर्सरी उसके लिए जब डालते हैं तो उसमें 2 से 3 ऑप्शन आते हैं कि आप क्या लगाना चाहते हैं, आप किस चीज के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो जो वो काम करना चाहते हैं जैसे हम नर्सरी की बात कर रहे हैं या मशरूम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आजकल ई मित्र द्वारा ऑनलाइन की जा सकती हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि भाई जैसे हमें सब्सिडी लेनी है या हमें इसके लिए आगे कुछ करना, तो उसके लिए जैसे कृषि आधारित जो भी कुटीर उद्योग है या हमारा जैसे गोट पालन हो गया, जैसे गोट पालन भी एक बहुत अच्छा चल रहा है, या डेयरी फार्मिंग हो गई, तो इन सब चीजों के लिए जैसे नाबार्ड बैंक है वो हमें मदद करता है, जैसे हमारा जिला उद्योग केंद्र है ये भी हमें जैसे हमारी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पे अच्छी खासी सब्सिडी हमें प्राप्त होती है
1: जी।
2: दीपा इंदौरे जी देखो किसान भाई जो है भी अगर कुटीर उद्योग लगावे तो बनाने तो लाभ मिले, लेकिन अगर कोई महिला है और महिला भी रोजगार करना चाहे भी आगे बढ़ना चाहे तो भी कुटीर उद्योग किसान लगा सके और किसान आगे बढ़ सके।
0: देखिए अगर कृषक महिला इस तरह का कुटीर उद्योग प्रारंभ करना चाह रही है तो हमारी जो सरकारी योजना है वो महिलाओं को कुछ विषयों पर या कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष अनुदान देती हैं, कुछ टैक्स में भी उनको छूट मिलती है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उनको जैसे उम्र संबंधित उनको छूट मिल जाएगी, उनको लाइसेंस के जो है उनसे भी कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जिनसे उनको छुटकारा मिलता है, उनको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट मतलब जो सब्सिडी है वो अलग तरीके से, तो ये सारी चीज़ें महिला होने के नाते उनको कुछ अलग से मतलब किया जाता है।
1: तो ये जिसान की आप कुटीर उद्योग की बात करें इनके साथ मैंने कही कि देखो नरे किसान भाई ऐसा है जो वे कही है कि कुटीर उद्योग मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखे या वहां ने बहुत ज्यादा पेचीदगी मैंने पड़े नरे जना कही कि सीधा मतलब जैसे कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहे जिसान की उद्योग व्यापारी खुद है तो उद्यमी बनना है वणा ने भाई वणार खेत में ने बहुत बड़ा स्तर पर वणी चीजों रो उत्पादन वही रो है और वंडा व्यापारी वणा ने अगर बनना है तो वंडा वास्ते भी कई वो जो उद्यमी वाला लाइसेंस का कागज या वही चलेगा या वंडा वास्ते और अलग तरीकों के
0: नहीं? देखिए अब जैसे एक सिंपल साधारण उदाहरण देते हैं कि जैसे व्यवसायी है वो अपना कोई और बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई भी, जैसे उसका हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल रहा है या और कोई भी, जैसे सिंपल उसने किराना की दुकान लगा रखी है।

0: है ना, लेकिन अगर उसके एक तरफ कल्टीवेशन चल रहा है किसी भी क्रॉप का और उसको स्विच करना है उसके रूप में कि उसमें किसी प्रोसेस करना है, जैसे मान लिया हम गेहूं की बात करते हैं, तो उसने गेहूं की फसल लगा रखी है और वो उसको चाहता है कि मैं एक कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करूं, तो वो अगर उसका पोरियस यानी कि दलिया बना सकता है, उसकी सूजी बना सकता है, उसका आटा बना सकता है, ठीक है, साथ ही साथ ये करके जैसे, और उसके लिए जैसे हमें सब्सिडी मिलेगी, जैसे वो कुटीर उद्योग के रूप, तो इधर से वो लगाएगा एक, और अगर उसको जैविक तरीके से लगाएगा तो उसकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। एक तो साधारण आटा, एक जैसे अभी जो गेहूं की रेट चल रही है वो 25 से 27 30 ऐसा कुछ रुपए किलो चल रहा है, लेकिन वही ऑर्गेनिक की बात करें तो 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो चल रहा है। तो जैसे अगर कोई हमारा, जैसे मान अभी अपन ने बात की थी कि कोई व्यक्ति है जिसने एक किराना की दुकान है और वो गेहूं लगाता है, अगर वो उसको ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहा है और फिर बाद में जब उसको प्रोसेस करके वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है, उसका दलिया बनाता है, सूजी बनाता है, और उस पे टैग लगा देता है ऑर्गेनिक, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ गई। तो वो ऐसे मामले में तो कहा जा सकता है कि वो बहुत ही स्मार्ट उद्यमी है। तो इस तरीके से वो मतलब चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको अगर वो इस एग्री बिजनेस करता है या एक कुटीर उद्योग करता है, तो इसके लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फॉर्मेलिटीज उस व्यवसाय से बिल्कुल अलग होगी।
1: जी, कुल मिला दीपा इंदौरिया जी, आज आप जो चर्चा कर रहे हैं उनको मेन उद्देश्य यो है कि किसान किसान नहीं रहे, किसान व्यापारी बने, किसान उद्यमी बने और अपनी आय ने बढ़ावा का प्रयास करें।
0: जी बिल्कुल।
1: कार्यक्रम में मनोरंजन को टाइम है तो किसान भाई ने सुनावा एक बढ़िया प्यारो सो लोकगीत धनराज सोनी जोधपुरिया की आवाज में।

0: वैसा किसान भैया बढ़िया सो भजन आपी हुनो है मात पिता की सेवा धनराज सोनी की आवाज में। और अब आपी बात कर लिया है कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि क्षेत्र में उद्यमी किसान बना इके बारे में। तो दीपा जी आप बताओ कि किसान भाई जो है कुटीर उद्योग लगायो है या उद्यमी बन गयो है, तो वो अपना सामान या जो भी वही उद्योग शुरू की दो है वह चीज कटे बैठ सके या विकी प्रक्रिया कही रहे ऐसा?
1: देखिए, जब उन्होंने कुटीर उद्योग प्रारंभ कर लिया है तो सबसे पहले तो इस बात पे मतलब ये बात होती है कि भाई उन्होंने क्या तैयार किया है, क्या प्रोडक्ट बनाया है, या वो अपना कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो उन्होंने तैयार किया। जैसे एक हम बात करते हैं वापस मशरूम की, जैसे बटन मशरूम है, तो जैसा कि आप लोगों को ही पता है कि चित्तौड़गढ़ एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हमारे यहाँ पर होटल्स में वो जाकर बात कर सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है और ये सैंपल है हमारा, तो ये होटल से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल मास मीडिया का ज़माना है, तो वो अपने जो भी अपनी मास मीडिया जैसे रेडियो के द्वारा, अपनी फेसबुक के द्वारा, अपने इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा, सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के द्वारा भी अपने जो अपना प्रोडक्ट है उसका वो विज्ञापन कर सकते हैं।
0: हाँ, आप बढ़िया बात बताई। देखो, और अब एक और सवाल पूछना चाहूँ कि कुटीर उद्योग जो अगर किसान भाई लगावे तो इनमें कई कई जोखिम रह सके हैं।
1: देखिए, कुटीर उद्योग लगाने की ही बात नहीं करते, करना जोखिम तो खेती करने में भी है, क्योंकि जब खेती की जाती है तो उस वक्त कितना जोखिम रहता है, कभी मौसम की मार होती है, कभी पानी की कमी होती है, कभी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरीके का आगे भी है कि जब भी कुटीर उद्योग प्रारंभ किए जाते हैं तो उसमें जोखिम जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस तरह के अप एंड डाउन आते हैं कि कई बार जैसे मांग, अगर जो भी हमारा कृषक उद्यमी है अगर वो ये देखे कि जो हमारे बाज़ार की मांग क्या है, अगर उसके हिसाब से वो काम करेगा तो उसको किसी तरह के खतरे की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे मूल चीज़ यही है कि क्या है, किधर की हवा चल रही है, किस चीज़ की मांग है, अगर वो उस मांग के हिसाब से चलेगा तो किसी तरह का जोखिम नहीं है।
2: दीपा इंदौरे जी, बहुत ही चर्चा, बढ़िया चर्चा अपनी चल रही है, पर हमारे दिमाग में ने एक सवाल यो आई रहो है कि जो किसान है आज की तारीख में, जो किसान है बहुत अच्छे तरीकों खेती कर रहा है, चाहे जैविक खेती कर रहा है चाहे रासायनिक खेती कर रहा है, लेकिन किसान ने उद्यमी या कुटीर उद्योग लगावे की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, यार क्यों अन्य चीज ने करना जरूरी?
1: ये बहुत आवश्यक परिवर्तन है और ये होना चाहिए
2: जी।
1: आज जो हम इतने सालों से देख रहे हैं, आप भी, आप अखबार पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मास मीडिया पे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे किसानों की हालत कितनी ख़राब है। अब ये हालांकि आज तो आजकल ये चीज़ें दबा दी जाती हैं, जैसे किसान, जैसे उसको जो समर्थन वैल्यू से उसको भाव नहीं मिल रहा है तो वो आत्महत्या कर रहा है, या वो कोई अपना प्रोडक्ट लेके आया है जैसे टमाटर लाए है, लहसुन लाया है, उसको रेट नहीं मिल रहा है मंडी में तो उसने आवेश में आके या फिर दुखी होके या तो उसी रेट में दे दी जिस हाल में वो आड़ दिया उसको कह रहा है, या फिर उसने आवेश में आके गाय के आगे वो चीज़ फेंक दी या उसने कहीं और उस चीज़ को फेंक दिया, तो इस तरीके से नुकसान किसका हो रहा है? किसान का हो रहा है। हमारा किसान मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में समय की मांग है कि हमारा किसान थोड़ा सा अपना रोल स्विच करें और अपने को कृषक का मतलब फार्मिंग करे, वो खेतीबाड़ी करे, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपना रोल स्विच करके कृषक उद्यमी के रूप में स्थापित हो, जैसे वो लगा रहा है उसी चीज़ को प्रोसेस कर ले और उसके साथ अगर वो जैविक जोड़ देता है तो उसके कृषक जो उत्पाद है वो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर वो लोग जैविक करते हैं तो ना सिर्फ वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे बल्कि खुद के परिवार को और इस समाज को भी शारीरिक रूप से सशक्त बनाएंगे
2: जी। डॉक्टर दीपा इंदौरिया जी, आप बहुत ही बढ़िया बात

0: दी है कि भाई कृषक जो है कृषक उद्यमी बनेगा क्योंकि आज का समय की मांग है। देखो सर, कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया चर्चा की दी है और अब कार्यक्रम में बढ़ावा आगे और आज की निम्बाड़ा मंडी का भाव भी अपना किसान भाइयों ने बता दा था। गेहूं अधिकतम 2400 लगार 2780 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का का भाव है 1650 लगार 2062 रुपया प्रति क्विंटल, जो का भाव रहा है 2150 लगार 2425 और चना का भाव रहा है 4700 लगार 5195 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और आसानी सोयाबीन का भाव रहा है 5600 लेन 7300 रुपया प्रति क्विंटल, मूंगफली का भाव है 7100 लेन 9001 रुपया, किनोवा का भाव है 5000 लेन 5900 रुपया और लहसुन का भाव है 5000 लेन 16500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब।
0: और इनके साथ ही आज का मौसम की अगर आप बात करें तो तापमान जो है अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी 14% है और हवा की जो बहाव है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब है। हल्का बादल छाया रहेगा और हवा चालवा की भी संभावना है।
1: और असानी काल के मौसम की बात करा तो काल को अधिकतम तापमान लेवा की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान लेवा की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस, काले आद्रता रहेगा 13% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब।
0: और देखो सर, आज आप बात कर रहे हैं कृषि आधारित कुटीर उद्योग और कृषि के क्षेत्र में उद्यमी बना और जो भी किसान भाई मांगो कार्यक्रम ढूंढ रहा है, कार्यक्रम में बना फोन अगर नहीं भी किया है लेकिन फिर भी बना ने उद्यमी बनवा की अगर इच्छा है तो वे अपना चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जा और संपर्क कर सके सा। मैडम दीपा इंदौरिया जी भी बेटे मिल जाएगा और भी जो अपने कृषि वैज्ञानिक है बेटा उन्होंने पूरी पूरी जानकारी दे देगा सा। इनके साथ ही मागे कार्यक्रम को टेम वेरियो है पूरो अनिश काले अनिश भगत पाचा मल्लांगा चित्र देव मान्य सब जना निजाजित गणा गणा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM 102.9 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। इस वक्त शाम के ठीक 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम संदेशे आते हैं। ये कार्यक्रम आधारित होता है सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे श्रोताओं द्वारा की गई हिंदी फिल्मी गीतों की फरमाइश पर।

नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ से प्रसारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आते हैं। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेलारू। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के लिए हमने हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स और पेज पर जो पोस्ट की थी उसके कमेंट्स में हमें ढेरों श्रोताओं ने अपने नाम और अपनी फरमाइश भेजी है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेज से जुड़ने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए। जिन श्रोताओं को हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेज और अकाउंट की जानकारी नहीं है, तो हम उन्हें बता दें कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से, और साथ ही आपको हमें फॉलो भी करना है। यदि आप YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के नाम से सर्च कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में देर नहीं करते हैं।

और चलते हैं हमारे श्रोताओं के संदेशों की ओर और जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने किन किन गीतों की इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे आज फरमाइश की है और अपने पसंदीदा गीतों को हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाने की गुजारिश की है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला संदेश हम लेते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आज की पोस्ट के कमेंट्स में। आप हैं संजय ढींगिया और आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और आपके साथ ही नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और साथ ही कुछ और श्रोताओं के भी नाम हम जोड़ना चाहेंगे इस गीत के लिए। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और रवि कुमार, राहुल रवि भी, हम उनका नाम भी इस वक्त हमको दिख रहा है इस कार्यक्रम के लिए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही कुछ और भी संदेश हम लेना चाहेंगे। आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी से आपकी प्रोफाइल है, और आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा रानी गोस्वामी। और साथ ही आप लिखते हैं कि माई रेडियो माई लाइफ। देखिए, ये तो हम सभी की लाइफ है रेडियो तो। और अगला संदेश भी हम पढ़ते हैं, अगले कुछ श्रोताओं के नाम भी हम पढ़ते हैं। आप है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी और विपुल कांबड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने संदेश इस कार्यक्रम में प्रेषित करने के लिए। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: झुके झुके नैना।
1: ये झुके झुके नैना फिल्म भरोसा का ये गीत था और इस गीत के साथ हमने कई सारे श्रोताओं के नाम तो ले ही लिए। और श्रोताओं, हमें आपके संदेशों से पता चला कि आज कुछ श्रोताओं का जन्मदिन भी है, कुछ के परिजनों का तो कुछ के मित्रों का भी आज जन्मदिन है। तो आज हमारे जिन जिन

0: श्रोताओं का जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और जिनकी आज विवाह वर्षगांठ है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और अब चलते हैं हमारे अगले संदेशों की ओर, कुछ और श्रोताओं के नाम की ओर। तो श्रोताओं, हम अगला नाम इस कार्यक्रम में जो शामिल कर रहे हैं, आप है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और आपने संदेश के नीचे लिखा भी है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और कुछ और नाम भी हम लेना चाहेंगे, चर डोगरी, पीपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू और श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती इंद्राणी माया साहू। और आप चाहते हैं कि किसी भी गीत को इस कार्यक्रम में शामिल करें, जरूर हम किसी भी गीत को, क्या हम उसी गीत को शामिल करेंगे। और ये भी हम बताएंगे कि कौन सा वाला गीत इस कार्यक्रम में हम अब शामिल करने वाले हैं। तो अब और चलते हैं, कुछ और श्रोताओं के भी नाम हम ले लेते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, लगातार बोलते रहने से कंठ सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा कुछ पल का, यानी कि आधे एक सेकंड का विश्राम जरूरी होता है हमें भी। तो हम चलते हैं, कुछ और नाम लेते हैं। और आपकी जो प्रोफाइल है वो है मीका ब्रिक के नाम से, और आप भी यही कहते हैं कि एनी सॉन्ग, यानी कि कोई सा भी गीत हम आपके लिए इस कार्यक्रम में शामिल कर दें। आप हैं हरदेव मीका और बलविंदर विर्क और जय तेग विर्क और मीका विर्क, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने संदेश हमारी आज की पोस्ट के कमेंट बॉक्स में भेजने के लिए। और कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम लेना चाहेंगे। आप है तेलंगाना भुवनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद फजान, फरहान और समेरा आजमिन गुड़िया, तो आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और अगले कुछ नाम और लेना चाहेंगे। आप एक ग्राम दुर्रा बांदा भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू और बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। और आप है नजीबाबाद बिजनौर से संजय वर्मा और शालिनी वर्मा। और आप भी चाहते हैं कि किसी भी गीत को शामिल करें, हम जरूर अगला जो गीत है वही हम आप सभी को समर्पित करना चाहते हैं, खास तौर से उन सभी श्रोताओं को जिनका कि आज जन्मदिन है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सुनते हैं इस गीत को।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू।

0: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का कट।

चलिए श्रोताओं, बर्थडे की शुभकामनाएं तो हो गई है, अब चलते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। और गीत से पहले जान लेते हैं हमारे श्रोताओं के नाम। तो आप हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। और अगले कुछ और नाम भी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आप ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। और संतोष नामदेव के नाम से जो प्रोफाइल है वो नमस्ते कह रहे हैं और साथ ही आपके नाम बता रहे हैं। आप बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। और एक अनिल ताम्रकर के नाम से आपने काफ़ी लंबा चौड़ा आपने मैसेज भी लिखा है, लेकिन हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, तमाम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि आपके मन में कोई भी बात है, आपके दिल में कोई भी बात है जो आप हमारे साथ साथ तमाम श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं फिल्मी गीतों की फरमाइश के अलावा, तो इसके लिए हमारा एक खास कार्यक्रम आता है कुछ बातें कुछ गीत। इसमें हम उन बातों को शामिल करते हैं जिन्हें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। तो आप उस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करें, जरूर भाग लें और अपनी बातों को, अपने विचारों को हमारे साथ साथ तमाम श्रोताओं से भी साझा करें। और फिलहाल हम नाम लेते हैं अनिल ताम्रकर जी के साथ, उनके साथ कौन कौन श्रोता जुड़े हैं वो जरा जान लेते हैं। आप हैं अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और अगले कुछ संदेश भी हमें मिले हैं, जरा हम उनके भी नाम जान लेते हैं। आप कहते हैं कि नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सलाम दुआ आदाब, फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा और टिवाशनी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। तो खेड़ा परिवार को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, अपना संदेश हमें भेजने के लिए। और कुछ और श्रोताओं के भी नाम हम इसी गीत के साथ जोड़ना चाहेंगे। आप है बटेड़ा रोड मरडी डब्बूवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। और शार्दुल शहर जिला श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। और किसी भी गीत को शामिल करने की फरमाइश करने वाले कुछ और श्रोता भी हैं। आप हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये खूबसूरत गीत आपके अपने रेडियो सेट पर।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और इसी प्रकार से हमारे दिल के पास रहते हैं हमारे तमाम श्रोता जो इस कार्यक्रम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो जिन जिन श्रोताओं ने अभी भी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, जिन लोगों ने अभी अभी मोबाइल ऐप पर हमें ट्यून किया है और हमें सुनना प्रारंभ किया है, तो उनको बता देते हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। आपको करना बस यही कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करना है AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से, और हमारे कार्यक्रम में आज की जो पोस्ट है, इस कार्यक्रम से संबंधित जो पोस्ट है, उसके कमेंट्स में, उसके कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख भेजना है अपना नाम, अपने फरमाइशी गीत का नाम और अपने गाँव या शहर का भी नाम आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि हमारे तमाम श्रोता जान सके कि आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। और ये जो गीत है अगला वाला, ये पहाड़ों के हुस्न की बात करता है, लेकिन पहाड़ों का जो हुस्न है वो क्या कहता है वो तो हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि हमारे किन श्रोताओं को हम ये गीत सुनवाने वाले हैं। तो आप हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, ये हमने आपको बता दिया, इनके नाम हम ले चुके हैं। हम चलते हैं अगले कुछ श्रोताओं के नाम लेते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और सभी श्रोता मित्र आपका धन्यवाद। और कुछ और नाम हम लेना चाहेंगे। आप हैं गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, और आप लेते हैं कि धन्यवाद, शुक्रिया कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और भी नाम हम लेते हैं। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिघान, रिधान खुराना, और कुछ और नाम भी इस वक्त हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे श्रोताओं के, जरा उनके भी नाम जान लेते हैं। आप हैं पटियाली रोड गंज डूंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन हुसैन और परिवार के सभी सदस्य, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सतीश श्रीवास्तव के नाम से भी हमको प्रोफाइल दिख रही है। और आप हैं सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव और हिमानी श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव। इसके अलावा सादर प्रणाम के साथ अपने नाम भेजे हैं और किसी भी गीत को शामिल करने की गुजारिश की है। आप ये पसंद करता मालो रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। और कुछ और नाम भी हमारे सामने इस वक्त दिख रहे हैं। आप हैं धनोरा विटाली तहसील नांदूरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, प्रेम श्रेया, श्रुति भैया, और नंदूरा रोड जलगांव जामोद से संतोष काटे और उषा काटे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने संदेश हमें भेजने के लिए। और हम और नाम ले रहे हैं नाजगुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, और भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, और साथ ही आप कहते हैं कि तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें संदेश भेजने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और अब हम नाम ले रहे हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविश्ता, मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और यश मंसूरी, तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम की इस गीत की ओर, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी, यानी कि हुस्न पहाड़ों का।

हुस्न पहाड़ों का, और यही हुस्न हमारी इस कार्यक्रम का भी है, क्योंकि इस कार्यक्रम का हुस्न इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो श्रोता हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसी खूबसूरती के साथ हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले संदेश की ओर और अगले गीत की ओर। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ श्रोताओं के नाम। तो हम जो नाम ले रहे हैं वो हैं, आप लिखते हैं कि प्रेम पूर्वक आदाब और संदेश आते हैं, ग्राम कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। और किसी भी गीत को शामिल करने की दरख्वास्त हमसे करने वाले कुछ और श्रोता भी हैं। आप हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, और कुछ और नाम भी हम जोड़ना चाहेंगे इसे इसी गीत के साथ। यहाँ पे वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स में कुछ और नाम भी हमें इस वक्त दिख रहे हैं। यहाँ पे तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, और सोमदत्त नभा के प्रोफाइल से भी हमें संदेश मिला है, हालांकि उन्होंने और नाम नहीं लिखे हैं, केवल इकलौता नाम इनका खुद का है। और कुछ और नाम भी हमें मिल रहे हैं इन्हीं के कमेंट्स के बाद। रामसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल और मनु। और नाम हम और लेते हैं, आप हैं गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। और बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा। और कुछ और नाम भी हमको इस वक्त दिख रहे हैं, दिग्दर्शन गौड़ के नाम से प्रोफाइल आपकी, आप मेरठ कैंट से हैं और आपके साथ नाम है दिग्दर्शन और कविता गौड़। और हम चलते हैं कुछ और संदेशों की ओर। आप हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। और ग्राउंड नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। और चलिए हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, और सुनते हैं आप और हम सब। और इस गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।

आने से जिसके आए बहार, और हम तो यही कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के आने से भी इस कार्यक्रम में बहार आखिर आ ही जाती है। और बहार आई भी क्यों नहीं, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपना स्नेह हमें प्रदान करते हैं, तो चलिए हम भी इसी स्नेह का सम्मान करते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के अगले संदेशों की ओर। और आप एक ग्राम नवागांव मुढ़ी पार जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, तेजेश्वर साहू, कुशाल साहू और कुछ और नाम भी हमको दिख रहे हैं। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू, तो आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद रईस अब्बासी और निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज और फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी और कुछ और नाम भी हमको इस वक्त दिख रहे हैं। आप हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी और शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी और कुछ और श्रोताओं के भी नाम इस गीत के साथ हम जोड़ना चाहेंगे। आप हैं जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल और साथ ही स्वाति जायसवाल। आप जायसवाल फैमिली का भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, अपने संदेश हमें भेजने के लिए। श्रोताओं एक बार हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे, जो जो भी श्रोता इस कार्यक्रम से हमसे जुड़े हुए हैं और या जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन श्रोताओं ने भी अपने एक पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहा है, या तो हम उन सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेज हैं आप उन्हें भी फॉलो करें, ताकि आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ से प्रसारित होने वाले तमाम कार्यक्रमों से आप अवगत हो सकें और आप अपडेट रह सकें। इन्हें इन पेज से जुड़ने से आपका भी यह फायदा रहता है कि हमारे कौन से कार्यक्रम कब प्रसारित होने वाले हैं, कौन से विशेष प्रसारण हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको हमारे इन पेज के माध्यम से मिल जाती है, तो आप जरूर हमें फॉलो करिए। यदि आप फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ढूंढ सकते हैं AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से, और इसी नाम से यानी कि AIR चित्तौड़गढ़ के नाम से ही आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो आप देर मत करिए, आज ही हमें इन पेज पर आप फॉलो करिए, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करिए आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के पेज को। और आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube के माध्यम से भी, तो YouTube पर भी आप हमसे जुड़िए, और इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना है। आप YouTube पर आप हमें ढूंढिएगा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के नाम से जो चैनल है उसको आप ढूंढिएगा और इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन आप जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए नए अपडेट और हमारे नए नए कार्यक्रमों की जानकारी YouTube के माध्यम से भी मिल सके। तो अब हम चलते हैं अगले कुछ संदेशों की ओर, अगले कुछ नामों की ओर। आप गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी और नंदकिशोर गट्टे, संगीता गट्टे, साक्षी गट्टे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। आप है बीड शहर महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और नाम हम लेना चाहेंगे, आप उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव, आनंद, सत्यम आनंद। आप है पाकुड़ झारखंड से और बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट और मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार और आप सभी हैं गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से। आप सभी का बहुत बहुत

परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। देखो ये गीतों में तो बहुत अच्छा लगता है और कई बार अगर हम देखें हकीकत में तो अनजान लोगों से यदि जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते या जिन पे थोड़ा सा भी शक हो शंका हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप उनसे आँखियाँ मिलाएं, यानी कि उनसे आप बातें करें। और ख़ास तौर से आज का जो ज़माना है, आजकल का जो डिजिटल ज़माना है, उसमें तो हमको विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, ख़ास तौर से अनजान फ़ोन कॉल्स को लेकर, यानी कि आजकल आप सुनते भी हैं डिजिटल अरेस्ट वाली बात। और इसके बारे में हम कई बार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश भी आपको सुनवाते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। तो आप ऐसे परदेसियों से तो आँखियाँ बिल्कुल भी ना मिलाएं। और अगर आपके पास इस तरह की कोई संदिग्ध कॉल आती है जो आपको फर्जी पुलिस बनकर या अन्य बड़े विभाग के अफसर बनकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपको ठगना चाहते हैं, तो आप सचेत हो जाइए। और फिलहाल हम सचेत होते हैं कार्यक्रम में अगले संदेशों को शामिल करने के लिए। और कार्यक्रम का जो अगला संदेश है, हम हमारे फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें कई सारे श्रोताओं ने गीतों की फरमाइश की है, तो जरा हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका। और आप हैं ग्राम दुर्रा बोधा भाटापड़ा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, इनका नाम तो हम ले ही चुके। हम अपने कुछ श्रोताओं को और भी एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमको फेसबुक पर अपनी गीतों की फरमाइश कर ली है फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, तो आप दोबारा उसी गीत के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फरमाइश न करें, अपने नाम न भेजें, क्योंकि हमें बड़ी दुविधा होती है कि हम यदि एक बार आपका नाम इस कार्यक्रम में ले चुके हैं तो अगली बार उसी कार्यक्रम में दोबारा नाम लेने से हमारे दूसरे श्रोताओं के नाम रह जाते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि आप यही कार्यक्रम के लिए हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न पोस्ट के कमेंट बॉक्स में संदेश न भेजें। तो हम चलते हैं अगले संदेशों की ओर, अगले कुछ नामों की ओर। आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार। और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पिलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमें संदेश भेजने के लिए। और रश्मि पांड्या के नाम से एक प्रोफाइल है, वो भी हमें नमस्ते करके लिख भेजते हैं और आपने किसी और का नाम तो नहीं लिखा है, केवल आपकी खुद की प्रोफाइल पर खुद का ही नाम है बस एक मात्र। और भोला कॉलोनी गरोंडा जिला करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमें संदेश भेजने के लिए। और अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। और बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़।

तो आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब हम कुछ और नामों को भी जोड़ना चाहेंगे। आप हैं एक नाम हमारे सामने इस वक्त दिख रहे हैं, आप हैं टोरवाल गांव टोरवाल नवा शहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रीतम थांदी और बेबी वमिका और वाणी थांदी। चलिए आप सभी का धन्यवाद और अब हम ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, आपको ले चलते हैं इस प्यारे से खूबसूरत गीत की ओर, फिल्म का नाम मुक्ति।

सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। और यदि आपके जो संदेश हैं कुछ बाकी रह जाएं तो यकीन मानिए ये भी हमें सोने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो प्रयास यही है कि हम अपने तमाम श्रोताओं के संदेश इस कार्यक्रम में शामिल कर लें। तो चलिए सब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले संदेश की ओर। आप लिखते हैं कि शाही मार्केट शिवारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी और अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कबीर चौधरी। और उसके बाद हम नाम लेते हैं सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप और कुमारी करिश्मा कश्यप और मुस्कान कश्यप। और साथ ही कुछ और श्रोताओं के भी नाम हम लेना चाहेंगे। आप है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, रितु सिंह, कृषि सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह। और इसके बाद हम चलते हैं छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर और मानु शानू बबन मुनु कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर का नाम हम लेते हैं। और अब चलते हैं राजकुमार पटेल के नाम से भी हमको एक संदेश मिला है। आपके साथ हैं गोमती पटेल और कुछ और नाम भी हमको लेते हैं हम। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद और तरुण यादव। देखिए हम अपने धीरे धीरे करके कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि बचे हुए समय में हम कुछ श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में तो शामिल कर ही ले। आप है विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी और आप सभी थे दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से। और नाम हम कुछ और लेना चाहेंगे। ग्राम गुदुनपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से अजिता रावत, जया, स्वाति, आशीष और अमरजीत सिंह, अभय, अकुल, गोलू और रोशन। और इसके अलावा हम लेते हैं रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और धर्मेंद्र छिपा के नाम से भी एक प्रोफाइल हमको दिख रही है। आप है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। और सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित नामदेव और फरमाइश करता जो

अगले कुछ हैं वो हैं जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और नाम हमें कुछ और भी दिख रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, और आप सभी थे चरोदा बार नवापारा अभ्यारण से जिला बलोदा बाजार छत्तीसगढ़ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। और ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, और राजस्थान कोटा से सावन भादो गांव से रामस्वरूप मालो, गुड्डी मालो और अविका। आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप तो हमारे कुछ फोन इन कार्यक्रम से भी जुड़ते हैं, तो आप जो श्रोता हैं आप भी हमसे उन कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब नाम लेते हैं कुछ अगले। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान का नाम हम ले रहे हैं। और नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब श्रोताओं देखो, घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमें इशारा कर रही है कि बस हमें और संदेश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि समय हमारा हो चुका है इस कार्यक्रम का। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए इस कार्यक्रम से। आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम संदेश आते हैं। FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम आबिदा परवीन की आवाज में, इस सूफी रचना के रूप में।

0: आबिदा परवीन की आवाज में इस सूफी गीत को अभी आपने सुना। कार्यक्रम में सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।
1: जी सर, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया,
2: मैं तुकाराम जाधव,
3: मैं दिलीप पाहुजा,
4: मैं रतनलाल से सर,
5: मैं शारदा प्रसाद प्रजापति वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी हाँ, अब आप भी हो सकते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल, जो है हेलो फरमाइश, और दुनिया सुनेगी आपकी पसंद के गाने आपकी बातों के साथ। प्रत्येक गुरुवार शाम 7:30 बजे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल करिए प्रत्येक बुधवार दिन को 3:30 पर। हमारे फोन नंबर है 01472240020। कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
6: साथियों,

अनिल बेरवा के स्वर में इस सूफी गीत को भी आपने सुना। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। आइए सुनते रहे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। समाचार पहले हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन

0: नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण पहली जून से शुरू।

0: शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government. Floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the second round of Thailand Open in Bangkok. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated the special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency, NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Earlier, as per the sources, the Rajasthan Police SOG arrested 5 persons from Dehradun, including the alleged mastermind, seeker-based career counselor Rakesh Kumar on 7th May. for NEET

0: माँ में उड़ उड़ जाए।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंत्र, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हाँ हाँ,

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह